0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: लिफती नम्या का तब बेटा फिट जाऊं दिम्याल तब तनाना इजो जो हम जोपतन जो मैं इनफे ओफ होए साजी दिलंग सुन कोई जिम्नास में अंदर जोले ना मैं साइक नहीं जीवो आशा ही दिन पेचान मूलम जोरो हो चकर से जो म्या का तब बेरान पने फता लूले उलती जाने रंजान मायरा कुरंजान काजमांग मूद ओम जिम्नाजो ने फिर जान फॉर माइन फिर फिर वो ते तुम तनानो वे साजी दिरना सुन तीन मिस हो गए तमने पेशन ये जिम्नाजो वे साजी दिरना सुन ना दे बेरान जायदार को लेन मूलवा तुम बुरंदा लेने ना ते फपीने फपता देन ना वो इम तक चंग जे मला दाला क्या ले लाला न्यूज़ वाले ते नहीं तम यू फॉलो नहीं जिंगा आनम सानी सेरान ने फान बुतुच्च ने करान नंबरन चंग उनो द तान प्रेदानी फुक्तान पंगा जावा जावा तान साइक जे रंजेन वे फॉर मिश कनालियान फकेल
2: Tsan fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana de miakatra de tsy azo hivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nany hoe alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako izao zao hoe mba hoe kafana ny lalanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: अंदेवनी मालागासराय नु मालागासरेनी संजीसिंगे रेफं पामतेनी ब्रेरेरी केफकसकस चिमतेनसुन तेन मालागास दिरंदुसी दिरने अंगान फिज मेनकावे ओंतुकाटान सिमिस रेमतेन मालागासिनसुन वोजानकिन्याफ अटाने नातफुन रसेंडजे पामांग मतेन मालागास इज मेनकावे रो मांगासियास चेन निमामाल रो मालागासियावन वोफातचिन्याफ लेला सिनवावन रामतेन जास जेम्रिसकम रश्दिनीच उल्नाम्बान तेन निवोईन वतोन लाजन फमा मेनताल जात्तेन लाजन जेन जवन स्येन स्केतोर इन्नं तुईन आवन स्यावोन उया मामाल रेफा चुआस दे हुन हुन सिशन तेन मालागास न्यानरुआवे गांब आउको उतेलें, चीवला जैनाचूचा चिया फेंटें, जास देयांदु न्याजे चिलेवुन, निवाई न्यांदी, तुम न्यांदेवुन.
0: शोटो तुम कुला, शोटो तुम कुवाव.